0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के

0: राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Stressing on the empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. Union Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Alwar, Rajasthan today. The Ministry of Cooperation informed that at the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be e-inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,000

0: दूसरी पंक्ति है, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको हमको रोक सके ना कोई, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का, हम वायु का वेग है।
1: प्रथम अंत आको एक बार सुनिबा दे।
0: मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग है। लिखा
2: जी सर।
0: आप पढ़िए पहला अंतरा।
3: मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग है।
1: तार पिसत आको स्थाई लय आहिबा।
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
1: इतिया द्वितीय अंतरातु लिखी लुआ।
0: हम किसी से कम नहीं। क्या लिखा?
3: हम किसी से कम नहीं,
0: हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तीसरी पंक्ति है, एक एक मिल ग्यारह होते, एक एक मिल ग्यारह होते, हम तब बड़े दिलेर हैं, हम तब बड़े दिलेर हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं दूसरे अंतरे को। हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं। क्या लिखा आपने? आप पढ़िए।
3: हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं।
0: ठीक है,
1: तुम लोग के लिखिला न जानो। यार पिसर स्थाई लो आको घूरी आहिबा। द्वितीय अंतरातुर पिसर तृतीय अंतरातु लिखिबा।
0: जीवन सड़क बनाएंगे, जीवन सड़क बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, धन धान्य

0: पतंगे, तीसरी पंक्ति है कोई मानव दुखी रहे ना, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी तेर है। लिख लिया?
1: जी सर।
0: मैं पढ़ता हूं, आप देख लीजिए। जीवन तरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी तेर है। ये था हमारा तीसरा अंतरा। फिर हमारी स्थाई आ जाएगी, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। ठीक है
1: जी सर।
0: अब मैं पूरा गीत पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। हम एक हैं,
1: हम एक हैं,
0: हम एक थे,
1: हम एक थे,
0: हम एक रहेंगे,
1: हम एक रहेंगे,
0: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
1: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
0: आगे बढ़ते जाएंगे,
1: आगे बढ़ते जाएंगे,
0: हमको रोक सके ना कोई,
1: हमको रोक सके ना कोई,
0: हम वायु का वेग हैं,
1: हम वायु का वेग हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: दूसरा अंतरा है, हम किसी से कम नहीं,
1: हम किसी से कम नहीं,
0: हमें किसी का डर नहीं,
1: हमें किसी का डर नहीं,
0: एक एक मिल ग्यारह होते,
1: एक एक मिल ग्यारह होते,
0: हम सब बड़े दिलेर हैं,
1: हम सब बड़े दिलेर हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
0: जीवन तरस बनाएंगे,
1: जीवन तरस बनाएंगे,
0: धन धान्य उपजाएंगे,
1: धन धान्य उपजाएंगे,
0: कोई मानव दुखी रहे ना,
1: कोई मानव दुखी रहे ना,
0: ऐसी सबकी तेर है,
1: ऐसी सबकी तेर है,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: लिख लिया आपने ये गीत?
1: जी सर।
2: बारु एतिया तुमालुके गीतटी शिकिबोलै चेष्टा करा। ए गीतटी कहार बातलत गुआ होइसे। प्रथमे तुमालुके स्थायीटू शिकि लोआसुन।

0: Acabou.
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
4: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
4: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
4: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत

0: के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए

0: मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गेंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा, महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांव में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार

0: भारत का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies.

बिहार नालंदा से ही, ठीक है। एंड वहां से अपना बस ट्रैवल का जो मेरा सपना था वो बस पूरा करने के लिए लद्दाख में निकला था। एंड जस्ट नॉर्मल साइकिल से मेरा माइंड था कि मैं बस ट्राई करता हूँ, क्या मेरा सपना है ट्रैवल करने का, मैं ट्रैवल के लिए बहुत कुछ झेल सकता हूँ। एंड मैं लद्दाख पहुँचा बहुत मुश्किल से, मतलब 2 महीने में मैं कितना दिन भूखे रहूँगा, कितना दिन सोया भी नहीं होगा अच्छे से, ना मेरे पास उतने अच्छे टेंट भी नहीं थे। मैं बहुत 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था ऐसे ही नॉर्मल साइकिल से। उसके बाद मैं दिल्ली में 2 वीक्स काम करके टेंट लिए ताकि मैं लद्दाख में थोड़ा सर्वाइव कर पाऊँ अच्छे से। तो वहाँ टेंट एंड स्लीपिंग बैग लेके मैं लद्दाख खारदुंगला पास एक नॉर्मल साइकिल से पहुंचा। 2 महीने लगे मुझे बिहार नालंदा से। एंड तब तक मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था। लद्दाख में मैं सोनम वांगचुक सर से मिला, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो 1 वीक, फिर उसके बाद आराम से जाओ। तो मैं उनके पास रुका 1 वीक एंड अच्छा लगा उनके पास रुक के, बात किया। फिर उन्होंने लास्ट डे मुझे सरप्राइज दिया, एक ब्रांड न्यू साइकिल, गियर का साइकिल दिया, क्योंकि मेरा साइकिल जो था नॉर्मल साइकिल था एंड वो पहाड़ों में चलता नहीं है। मैं पैदल ही चला था, 400 किलोमीटर पैदल चला था लद्दाख जर्नी करते वक्त। वो साइकिल से फिर बहुत लोग मेरे जर्नी में जुड़े, बहुत लोग थोड़े थोड़े पैसे देते थे मंथली ताकि मैं अच्छे से ट्रैवल कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मेरा था कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूँ। एंड लोगों को मेरे पे बिलीव था कि ये कुछ करेगा आगे जाके, तो लोग मेरे जर्नी में जुड़े। एंड फिर मैं वो साइकिल से स्टार्ट किया, मैं हिमाचल उत्तराखंड ट्रैवल किया। एंड इसमें मेरा 4 मंथ्स गया, 4 मंथ्स मैं ट्रैवल किया। एंड 4 मंथ्स के बाद मुझे यूपी में ये छोटा सा पप्पी जो मैं दूर से देख रहा था तो मुझे लगा ये एक्सीडेंट में मरी हुई है, तो वहां पे मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा। वो दिन था 3 जुलाई 2024, ठीक 4 महीने बाद, जब मैं जर्नी स्टार्ट किया था ठीक 4 महीने बाद मुझे चार्ली दिखी, जिसका एक पैर पूरा टूट रखा था, कोई एक्सीडेंट करके गया था रोड पे हाईवे पे। मैं इधर एमपी तरफ जा रहा था, तो यूपी गाजियाबाद में दिल्ली से बस थोड़ा पीछे ही ये मिली थी मुझे। तो मैं इसको बस साइड करने गया एंड देखा कि ये तो जिंदा है। तो मैं छोटा सा बैग था मेरा जो पीठ पे रखता था वो आगे लिया एंड इसको लेके मैं 60 किलोमीटर उस दिन ऐसे ही साइकिल चला के एक जो मेरा जान पहचान के थे मैं वहाँ पे लेके गया, इसको ट्रीटमेंट करवाया। एंड ये वहाँ पे कुछ दिन के बाद ठीक हो गई, मतलब एक पैर से वो लंगड़ा के थोड़ा थोड़ा चल रही थी। फिर मैं सोचा इसको वहीं पे रख दूंगा रिलेटिव्स के पास में। तो वहाँ जब इसको रख के मैं साइकिल लेके जाने लगा, वो 3 पैर से मतलब ऐसे दौड़ते हुए एंड मेरे पास आई एंड मेरा पूरा फेस चाटा, पूरा एकदम प्यार किया कि जैसा लग रहा था ये बोल रहा है कि मुझे छोड़ के कैसे जा रहे हो वैसा करके। एंड मेरे भी आंखों में आंसू हो गया, इसके साथ बहुत अटैचमेंट हो गया था तो मेरे भी आंखों में आंसू हो गया। फिर मैं सोचा इसके साथ भी कर सकता हूँ मैं ट्रैवल, मैं संभाल सकता हूँ, छोटा सा बच्चा ही तो है, पपी तो है, संभाल सकता हूँ, कहीं छोड़ने से अच्छा है कि मैं अपने पास ही रखूँ, जब मेरा जर्नी खत्म हो जाए तो मैं लेके जाऊँ इसको घर पे। वैसा करके मैं छोटा सा कैरेट स्टार्टिंग में अपना हैंडल में ही छोटा सा वो सब्जी का कैरेट होता है मैं वो बांध दिया बंजी रोप से एंड उसी में ही हम लोग ट्रैवल करते रहे। जैसे मैं सोलो ट्रैवल करता था उससे बहुत ही अच्छा लगने लगा, मेरा एक कंपेनियन मिल गया जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मुझे एकदम बहुत समझने लगा, अच्छा लगता था मुझे इसके साथ ट्रैवल करके। लोगों का और इंट्रैक्शन बढ़ गया कि वाह डॉग के साथ ट्रैवल कर रहा है, लोग कितना लोग मुझे देख के बहुत लोग डॉग अडॉप्ट किया, तो अच्छा लगता है। मैं एक क्रुएल्टी के लिए भी बोलता हूँ लोगों को कि अच्छा बी काइंड टू एनिमल्स, बहुत अच्छा से व्यवहार करें एनिमल्स को, मारे ना, अगर आप कुछ खिला भी नहीं सकते तो कम से कम मारो मत, वैसा करके मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ। एंड मुझे फिर तभी से मेरा दिमाग में आ गया कि मैं इससे मिलने के बाद, पहले था मेरा कि मैं कुछ करूँगा एनिमल्स के लिए लेकिन खुद पे बिलीव नहीं था कि मैं एनिमल शेल्टर खोल सकता हूँ, लेकिन इसके मिलने के बाद खुद पे लगा कि भाई कोशिश करते हैं, होगा नहीं होगा बस ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में। मैं कोशिश करता हूँ कि एनिमल शेल्टर मैं बना पाऊँ बिहार नालंदा जैसे जगह पे, क्योंकि मैं पूरा बिहार ट्रैवल किया हूँ एंड बहुत ही मतलब वहाँ पे क्रुएल्टी केसेस होते हैं, शेल्टर नहीं है, डॉग्स का ट्रीटमेंट, छोटा सा घाव हो जाता है धीरे धीरे बढ़ते हुए, वो एक दिन मर जाता है। तो ये सब देखते हुए मैं सोचा एनिमल शेल्टर बनाने के लिए मैं पूरा इंडिया राइड करता हूँ चार्ली के साथ में। फिर वहाँ से मैंने यूपी से जब मैं स्टार्ट किया तो दिल्ली गया, दिल्ली से राजस्थान गया इसके साथ में ही, राजस्थान से फिर मैं एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर मैं तमिलनाडु धनुषकोडी तक गया और रामेश्वरम तक एंड आसपास के जितने भी ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग मैं वो भी कंप्लीट कर रहा था, ताकि जब मैं ये जर्नी करूँ तो लोगों को भी बोल सकूँ कि मैं ये सब दर्शन भी किया हूँ। तो ये सब फिर मैं आंध्र प्रदेश आया,

0: आंध्र प्रदेश से, फिर मैं इधर, फिर महाराष्ट्र इंटर किया, फिर यूपी किया, फिर वेस्ट बंगाल, ऐसे करके मेरा बहुत सारा स्टेट्स हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये सब भी ट्रैवल किया मैंने। तो मेरा पूरा साइकिल से मैंने 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी ट्रैवल किया। मैंने वेस्ट बंगाल ट्रैवल किया, सिक्किम ट्रैवल किया, तो लास्ट मेरा सिक्किम जर्नी था, वहाँ पे मेरा रिब्स में पेन हो गया। रिब्स में पेन होने के बाद मेरा जर्नी, मतलब साइकिल ऐसे, मैं सिक्किम का रोड बहुत अपहिल है, तो मैं पूरा वेट के साथ ऐसे धक्का मार के जा रहा था, तभी मेरा ये इंजर्ड हो गया रिब्स। तो डॉक्टर से सबसे दिखाया, वो बोला अभी तो साइकिलिंग तुमको बंद करना होगा। तो मैं 2 महीने 2.5 महीने अपना ट्रीटमेंट करवाया, एंड फिर एक मैम आया, द जारा एनिमल प्रोजेक्ट, वो क्या करते हैं फीमेल डॉग का आइसोलेशन करवाते हैं, वो 17,000 डॉग का आइसोलेशन करवा चुके हैं, वो द जारा एनिमल प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ जुड़ के ये द जारा एनिमल प्रोजेक्ट को तुम लोगों तक पहुँचा सकते हो, आइसोलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बर्थ कंट्रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है फीमेल डॉग मेल डॉग के लिए, तो ये लोगों को तक पहुंचा सकते हो, एंड बदले में मैं तुम्हें एक स्कूटी स्पॉन्सर करता हूँ। तो वो जब मैं स्कूटी से सोचा कि हाँ अच्छा कॉज के लिए है, जुड़ सकते हैं, तो मैं फिर साइकिल अपना सिलीगुड़ी में ही रख के मैं स्कूटी से जर्नी कंटिन्यू किया, एंड बहुत ही अच्छा अभी तक रहा। मैंने अभी स्कूटी से मेरा 2 ही स्टेट्स हुआ है, मैं असम पूरा ट्रैवल किया, नागालैंड ट्रैवल किया हूँ, एंड स्कूटी से मैंने 3,000 किलोमीटर कम्प्लीट किया। अभी तक मेरा 19,000 किलोमीटर हो चुका है, 90,000 to 20,000 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका पूरा इंडिया में, एंड 19 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरी ट्रैवल कर चुका मैं चार्ली के साथ में, फॉर ए कॉज कि मैं एक एनिमल शेल्टर बना सकूँ। एंड इस रास्ते में मैं फंड रेज कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ कि मैं जब एनिमल शेल्टर खोलूँ तो लोग मेरे सपोर्ट करें, एंड एक बिहार में अच्छा शेल्टर हो जहाँ ट्रीटमेंट हो सके डॉग्स का, अच्छा से केयर हो सके, मैं फीड करा सकूँ, जो भी डॉग्स थे उसको ला के अपने पास रख के उसका ट्रीटमेंट करवा सकूँ। तो इसीलिए मैं पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड अभी कुछ स्टेट्स और बाकी है, फिर इसके बाद मेरा जर्नी खत्म होगा, दिन फिर मैं बिहार नालंदा में शेल्टर जाके बनाऊंगा।
1: बातत बहु बाधा बिकिनी किंतु अति मरम लगा पुआलीटू जाक चार्ली बुली माते सोनुई, चार्लीक लगत लुई ए जी यात्रा, ए यात्रात सोनू जेतिया आगबाढ़ी गईसिल, ए यात्रा जन तेर बाबे आरु बेसी सुखर आनंददायक होई पड़िसिल। सोनू आरु चार्ली होई पड़िसिल अंतरंग बंधुर दरे। जेतिया सोनू घरर पुरा उलाय आहिसिल भ्रमण करिबुलै एखन साइकेल लई, तेतिया बारु तेखेतर पितृमात्रिये बाधा दिया नासिल ने?
0: घर से अलावा का ये है कि मैं मम्मी पापा से बचपन से ही मैं दूर रहा हूँ, दादा दादी के पास मैं पला बड़ा, जब दादा एक चले गए 3 साल पहले वो चल गए, तो तभी मेरा दिमाग में ये सब आया, तभी मैं ट्रैवल भी स्टार्ट किया, क्योंकि कितना भी प्लान कर लो लाइफ प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं निकल गया था ट्रैवल पे। एंड मम्मी पापा बिलीव करते कि कहीं भी रहेगा तो सेफ रहेगा, क्योंकि मैं बहुत काम किया हूँ, जब बहुत कर्ज था तो मैंने कर्ज उतारने के लिए पैसे बहुत बाकी थे फैमिली के पास, तो वो पैसे लेने के लिए बहुत लोग घर पे आते थे, कुछ बोलते थे, तो देखते हुए मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं 1 साल पेट्रोल पंप पे काम किया, एंड फिर मैंने 6 महीने दिल्ली में फ्रूट्स भी बेचे हैं ठेला पे, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि मैं ठेला का भी चलाऊंगा जब पढ़ाई कर रहा था, तो
2: पढ़ाई कब तक किया?
0: मैं बीए 3rd ईयर तक पढ़ा, एंड फिर जब मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था तो मेरा फाइनल एग्जाम रह गया था, छूट गया था, तो ड्रॉप आउट 3rd ईयर तक।
1: सोनू ए भ्रमणर जी समयसुआ ए समयत विभिन्न ठाइलै जुआ होइसे, विभिन्न राज्यलै विभिन्न ठाइ विभिन्न ধৰণৰ ব্যক্তিক লগ পোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ হৈতে হয়তো কিছমান বিশেষ অভিজ্ঞতা হৈছে, ভাল লগা কিছু মুহূৰ্ত পাৰ কৰা হৈছে, যিদৰে গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে চন্দ্ৰানী দাসক লগ পোৱা হৈছে, আমি লগ পাইছো চন্দামিতা অভয় তেওঁলোকে লগ পাইছে, এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ব্যক্তিক লগ পাই নিশ্চয় কিবা বিশেষ অভিজ্ঞতা হৈছে, আজি নিশ্চয় শ্ৰোতাসকলক কিবা কবলৈ মন যাব সেই বিষয়ে।
0: ওকে, স্পেশাল ইয়ে কি জেসে মই অলগ অলগ ষ্টেটছ মে ট্ৰাভেল কৰতা হু, एंड इतने काइंड लोग मिलते हैं ना इंडिया में स्पेशली, कि बहुत काइंड लोग, जैसे मैं अभी असम का बात करूँ, अभी मैं असम में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो असम का बात करो क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं, मैं हर जगह कैंपिंग टेंट लगाता हूँ पेट्रोल पंप पे, लेकिन मैं कम से कम 1.5 से 2 महीना असम में रहा, इधर उधर ट्रैवल किया, पूरा असम ट्रैवल किया, इतने फ्रेंडली लोग, वेलकमिंग लोग हैं कि वो खुद भी घर पे बुला लेते हैं, सब कुछ छोड़ के मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे उनका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, सब कुछ वो सोचते हैं ये मोमेंट है ना जो बस स्पेशल है, मेरे साथ छोटा सा ही टाइम उनको उनके लिए बिताना ना उनको बहुत स्पेशल बना देता है, एंड मेरे लिए लगता है कि मैं कहाँ था 2 साल पहले, एंड अभी मेरे साथ छोटा सा ही टाइम कोई बिताता है तो उनको बहुत स्पेशल लगता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना।

0: होता है, मैं उसी में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि स्टार्ट स्टार्ट करना जरूरी होता है, फिर बेटर धीरे धीरे हो जाता है। तो मैं स्टार्ट कर लूंगा, देन फिर लोग जुड़ेंगे। तो मैं ये जर्नी से बस लोगों को जोड़ रहा हूँ कि हाँ मेरे मिशन में जोड़ो, एंड फिर वो बाद में भी हेल्प कर सकते हैं वैसा है।
1: সোনু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বিহাৰৰ অলিয়ে গলিয়ে পথত বহুতো কুকুৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহুতৰ হয়তো এই জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি বিশেষ মৰম নাথাকিব পাৰে, কোনোবাই হয়তো এনেকুৱা জীৱ জন্তুক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে, এনেকুৱা চিন্তা কিছুমান নিশ্চয় মনলৈ আহিছিল, আৰু সেইকাৰণেই এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল। কিন্তু চাৰ্লি

0: মৰম নাথাকিব পাৰে, কোনোবাই হয়তো এনেকুৱা জীৱ জন্তুক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে, এনেকুৱা চিন্তা কিছুমান নিশ্চয় মনলৈ আহিছিল আৰু সেইকাৰণেই এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল। কিন্তু চাৰ্লিক লগ পোৱাৰ পাছত এই চিন্তাটো আৰু বেছি গাঢ় হৈছিল নেকি?
1: পেলে থা মেৰা কি বহুত প্যাৰ কৰা থা মুঝে দাদাজী 5 ৰূপে 10 ৰূপে ভি দেতে থে, তো মেৰে ডগছ কো বিস্কিট খিলা দেতা থা, বহুত আচ্ছে লাগতে থে মুঝে ডগছ। লেকিন কৰনা থা বহুত কুছ, লেকিন ও বিলিভ নহীঁ থা কি মেঁ কৰ পাউঙ্গা। লেকিন চাৰ্লি জব মেৰে লাইফ মে আই না, তো এক বিলিভ হো গয়া কি মেঁ কৰ সকতা হুঁ, কুছ ভি কৰ সকতা হুঁ এসা কৰকে। এণ্ড মেঁ এনিমলছ কে লিয়ে বহুত অটাচ হো গয়া জব ইসকো দেখা, তো অর ভি লাগা কি ইসকে জেসে কিতনে সারে ডগস হোঙ্গে জো ঘর নহীঁ মিলতা উনকো, ট্রিটমেন্ট নহীঁ মিল পাতা। জেসে ইয়ে ভি মুঝে अगर अभी ये मेरा कितने डॉग्स का ये लाइफ चेंज किया, मेरा भी लाइफ चेंज किया, अभी इसको कोई रोड पे ऐसे ही मैं नहीं देखता तो ऐसे ही ये मर जाती। तो मैं सोचता हूँ इसके जैसे कितने सारे डॉग्स हो गए जिसको मेरे जैसा सोनू नहीं मिलता रहेगा, तो मैं उसके लिए सोनू वो बनना चाहता हूँ जो मेन टाइम पर उनका हेल्प कर पाए, रेस्क्यू कर पाए। तो मैं इसलिए भी खुद पर बिलीव हो गया कि मैं करूँगा एक दिन जरूर शेल्टर खोलूँगा, एनिमल शेल्टर जरूर, एंड वो जल्दी पूरा होने वाला है। एंड ऐसे बिहार में बहुत क्रूएल्टी होता है, हर जगह डॉग्स हैं वहाँ पे, और लोग बहुत कम लोग हैं जो प्यार करते हैं डॉग्स के साथ, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि वहाँ के लोग भी वैसा है, मतलब बहुत गरीबी में जी रहे हैं वैसा। लेकिन वो एक होना चाहिए दिल से कि प्यार होना चाहिए, वो नहीं है वहाँ पे। असम में मैं पूरा ट्रैवल किया, हर लोगों के पास मतलब ऐसा है डॉग्स है, बहुत लोगों के पास, बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास डॉग्स नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत एनिमल को बहुत पसंद करते लोग, हर जानवर को, बहुत अच्छा लगा असम में ट्रैवल करके। तो मैं बोलूंगा अगर असम जैसा भी बिहार हो जाता है एनिमल्स के प्रति तो बहुत ही अच्छा होगा, कि हर जगह शेल्टर खोलने का भी नहीं होगा वैसा।
0: सोनू चार्लिक लगत लई एक दिघोलिया समय
1: 2 साल 1 महीना हो गया उसे,
0: भारतवर्ष विभिन्न ठाई लई जुआ होइसे, विभिन्न व्यक्तिक लग पुआ होइसे, बातत एनेकय गई थका अवस्थात केतियाबा किबा असुविधार सम्मुखीन होइसे नेकि? চার্লি লগত থকা কিবা অসুবিধা হয়েছে নাকি বা কিবা প্রত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়েছে নাকি?
1: প্ৰবলেম তো হতা হ্যাঁ, লেকিন এসা এসা হামারে বন্ড হো গয়া না চার্লি কা। মানে এক ইনসিডেন্ট বতাতা হুঁ, প্রবলেম বহুত হতা হ্যাঁ, জেসে ডগস কো দেখ কে ও চার্লি ভি রিয়্যাক্ট করতি হ্যায় সামটাইম। লেকিন চার্লি বহুত হি ফ্রেন্ডলি হ্যায়, মতলব দূসরে ডগস কে সাথ খেলনে কো জাতি হ্যায়, উছল কুদ করতি হ্যায়, জো ফ্রেন্ডলি হ্যায় ডগস উসকে সাথ খেলেগি, জো আগর অ্যাগ্রেসিভ ডগ হ্যায় उससे भाग के आ जाएगी मेरे पास। लोग से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग कभी कभी स्टे करने नहीं देते हैं, ढाबा के बाजू में टेंट भी नहीं लगाने देते, पेट्रोल पंप पे भी। तो लेकिन ये सब मैं झेल अच्छा है, मना करने से भी ठीक ही लगता है कि कोई नहीं आगे जाके किसी लास्ट तक कुछ बेटर ही हो जाएगा। लेकिन हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया ना, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में इतना मतलब चार्ली ने होशियारी दिखाया, मैं बेहोश हो गया था। मैं पहले महाराष्ट्र का बात है, महाराष्ट्र गोवा हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे मैं बेहोश हो गया। एंड उससे जस्ट पीछे ही हम लोग 400-500 मीटर पीछे ही ब्रेकफास्ट करके वड़ा पाव एंड चार्ली को कुछ खाना वाना खिला के निकले ही थे, तभी एक्सीडेंट हो गया मेरा। एंड मैं बेहोश, एंड मेरा पैर में ऐसे गड्ढे हो गए थे, यहाँ पे पूरा गड्ढे हो गए थे ऐसा कि पूरा ब्लड आ रहा था। तो चार्ली क्या, चार्ली पैर एक कैरेट में थी है, उसको बांध के भी नहीं रखता हूँ, तो वो उछल के वो तो गिर गई, मैं बेहोश, मेरा साइकिल भी उधर। एंड चार्ली क्या कि पीछे ढाबा पे भाग के गई एंड वहाँ पे भूख रही थी। एंड वो लोग भी समझ गए कि अभी तो ये लोग गया है, वो लोग आगे जैसे ही बढ़े मैं दिखाई दिया एंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए। एंड जब मैं वहाँ से आया ना, तो मैं पूरा वो वहाँ पे रोया जब मैं हॉस्पिटल से आया। एंड हॉस्पिटल का भी अलग सीन था, वो लोग टाके देने वाले थे, लेकिन मेरा वहाँ जान पहचान को उस वक्त कोई नहीं था, उनको बोला टाके मत दो। फिर मैं हॉस्पिटल से आया एंड चार्ली मेरे से इतना प्यार की, पूरा लिए, कितना हैप्पी। एंड उस वक्त मैं सिर्फ रोए जा रहा था कि एट दिस मोमेंट मेरे पास कोई नहीं है सिर्फ इसके अलावा जो मेरा ख्याल रख सके। तो इसलिए भी बहुत ऐसा ऐसा कहानियां हैं जो हमारा बॉन्ड स्ट्रांग कर देती है। एंड इसलिए भी चार्ली कितना भी बदमाशी करे, कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम दोनों को साथ ही आगे बढ़ना है ऐसा करके मैं मानता हूँ। और इंजॉय करता हूँ उसके साथ ट्रैवल करना, जर्नी करना, कि लोग मिलेंगे कुछ लोग बुरे जो हमें बोलेंगे कि नहीं इधर मत खड़े रहो, डॉग को उधर लेके जाओ, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते हैं, मैं उनको ध्यान रखता हूँ। छोड़ो, फिर से थोड़ी पैदा लेंगे यहाँ पे, तो जो भी अच्छा हो सके वो करना है, फिर एक दिन चले ही जाना है वही। तो मैं यही बोलता हूँ, बस जिंदगी जियो, कुछ जमा करने तो आए नहीं हो यहाँ पे, तो जितना अच्छा कर सकोगे करो।

0: अगर चार्ली कहीं इधर उधर चला भी गया उसके बाद आप स्कूटर जब स्टार्ट करते हैं तो आ जाता है वो?
1: हाँ, वो इसका ये है कि मेरे साथ रहते रहते मैं अकेले, मैं 21 इयर्स का हूँ, बहुत लोग बुरे भी मिलते हैं, तो ये इतना प्रोटेक्टिव है, मेरा बैग छूने नहीं देती है, मुझे कोई जस्ट टच भी ऐसे गलत से करेगा ना, जैसे कोई मार रहा हो, तो वो बहुत रिएक्ट करती है कि कोई भी डर जाए, एंड कहीं भी उसको मैं छोड़ देता हूँ कि वो मुझे फॉलो करती है पूरा। जैसे स्कूटी में बोलूंगा बैठ जाओ, या जैसे स्कूटी स्टार्ट करूंगा, वो कितना दूर भी रहे वो आ जाती है। पहले साइकिल पे था कि साइकिल में जैसे ही चलाया वैसे ही पीछे आ जाएगी वो भाग के, कितना भी उसको रोकने का ट्राई करो, वैसा है। बहुत सही है, मतलब कुछ भी अगर मैं सामान छू दिया, उसको बोला है कि मत छू इसको, कोई नहीं छूना चाहिए इसको, छूने नहीं देगा, वैसा है। अभी 2 इयर्स 1 मंथ हो गए, किसी को भी बाइट नहीं किया, लेकिन वो डराता ऐसा है कि वो कोई भी डर जाएगा, तो ये बेस्ट है।
2: আজি বহুতো শ্রোতাই অনুষ্ঠানটি শুনি আছে, কোনোবাই FM-ত শুনি আছে, কোনোবাই নিউজ অন AIR অথবা AIR ৰেডিঅ' এপত শুনি আছে, আমাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী ফেচবুক পেজ AIR গুৱাহাটীটো শুনি আছে। গতিকে শ্রোতাসকলক কি ক'ব বিচাৰিব, যে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি আমাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত? এই পৃথিৱীখন কেৱল আমাৰেই নে, জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি সকলোৰে মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ কিমান এক প্ৰয়োজন, সেই সম্পৰ্কে আজি শ্ৰোতাসকলক কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব?
1: মই এই আপীল কৰিব চাওঁ, বি কাইণ্ড টু এনিমেলছ, মতলব মত কৰো, আপ ৱো জো মাৰতে হো য়া পিটতে হো এণ্ড আপ খানা ভি নহীঁ দে ৰহে হো, তো মতলব ৱো আপছে কুছ মাংগ ভি নহীঁ ৰহে হো, বস ৰাস্তে পে হেন। अगर आप देख रहे हो किसी को मारते हुए तो चुप मत बैठो, आप वहाँ पे अगर एक बार उसको डांट भी दोगे, आवाज़ भी उठा दोगे, तो नेक्स्ट टाइम से शायद में भी नहीं करेगा, तो आप चुप मत बैठो। यहाँ पे तो अच्छा है, लोग बोलते हैं कम से कम, तो अलग अलग जगह से मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो अगर आप कोई भी क्रूल्टी देख रहे हो तो वहाँ पे चुप मत बैठो, कुछ भी एक्शन लो, लेकिन उसको बोलो, समझाओ कि ये गलत है, नहीं करो। एंड यही है कि आप मत देखो, मारो भी मत एंड देखो भी नहीं किसी को मारते हुए, बोलो वहाँ पे एंड अच्छा से ट्रीट करो। आप अगर कुछ बिस्किट्स है, कुछ अगर आप देख रहे हो आसपास किसी को नीड है, तो बस एक एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। आप छोटा सा एक्शन लेते हो ना, जैसे कोई एनिमल्स रोड पे है एंड आप कुछ कर पाओ उसके लिए, तो बहुत अच्छा है, वो हमेशा के लिए आपको एक थैंकफुल रहेगा, भगवान भी ऊपर से देखता है, आपको जरूर आशीर्वाद देगा। तो यही बोलना चाहूंगा, आप किसी को इग्नोर करके मत जाओ, अगर कोई स्ट्रे डॉग या कोई भी एनिमल्स रोड पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो इसको इग्नोर करके मत जाओ, आप कुछ भी वहाँ पे रुको, किसी को कांटेक्ट करो, या खुद भी उसको जैसे अच्छा से ट्रीटमेंट करवा सकते हो तो करवाओ, या खुद भी कुछ कर सकते हो, पट्टी ये सब नॉलेज इकट्ठा करो, हर कोई सीखो कि एनिमल्स के प्रति, एनिमल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, खुद से क्या कर सकते हो, अगर कोई एक्सीडेंट में देगा तो कुछ ना कुछ सीखो आप, एंड कहीं भी देखो तो वो काम आएगा। क्योंकि मैं अभी जर्नी में कम से कम 150 डॉग्स को ट्राई किया हूँ कि मैं उसको ठीक कर सकूँ, बहुत सारे डॉग्स को रोड के साइड पे जो मरा हुआ था, कम से कम उसको गाड़ तो नहीं सकता क्योंकि मैं जर्नी पर होता हूँ, तो कम से कम साइड ही कर दो उसको ह्यूमैनिटी के नाते। तो यही बोलता हूँ, आप कोई भी एनिमल्स को देखो जिसके साथ बुरा हो रहा है, तो आप उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो एंड शांत वहां से गुजर मत जाओ कि कोई और देख लेगा, नहीं, आप ही हो जो वहां से गुजरो, वैसे ही बहुत लोग गुजर जाएंगे, तो आप ही एक्शन लो एंड थोड़ा ठीक करो उसको, वही बोलूंगा।
2: सोनु खसा कोई भल लगिल ए समय खिनी आमी कथा पातिलु एक सपनर कथा, पथत थका जीवबुरर सुरक्षार कथा, आश्रयस्थल निर्माणर कथा, সুচিকিৎসা প্ৰদানৰ কথা, আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিলোঁ। 2024 চনত যি যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল, এতিয়া অসমৰ পৰা মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ এনেকৈ যাত্ৰা আগবাঢ়িব, আকৌ অসমলৈ উভতি আহিব, তাৰ পাছত বিহাৰ নালন্দালৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত আশ্ৰয়স্থল নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। হয়তো এই যাত্ৰাত যি ধনৰাশি গোটোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল সকলোখিনি হয়তো নহ'ব পাৰে, কিন্তু যি এক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে, যেন এটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলে নিশ্চয় ভৱিষ্যতে বিভিন্ন কামত সহযোগ কৰিব, এয়া এক ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। আজি এই প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি শ্ৰোতাসকলক অৱগত কৰিলোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যি সপোন লৈ নালন্দা বিহাৰৰ পৰা এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল, এই যাত্ৰাৰ সফল পৰিসমাপ্তি হওক। আকাশবাণীক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা লগতে সকলো শ্ৰোতাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ।
1: থেংক ইউ ছ' মাচ।
2: আৰু আহ্বান জনাইছো আমাৰ সকলো শ্ৰোতাক, আহক আমি জীৱকুলৰ প্ৰতি, আমি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সকলো দায়বদ্ধ হওঁ।

0: পূর্ব দেশত স্বাধীনতার রোল নাটখনি শুনিলে। বিভিন্ন চরিত্রত আছিল মহদানন্দ দেবগোস্বামী, কপিল বরা, লক্ষীপ্রসাদ গোস্বামী, চিন্ময় ভট্টাচার্য, দারোগা রাজীব বৰুৱা, কেপ্টেইন ফিঞ্চ আর বেণুধর ঋতুপর্ণ।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীর মহাবাহু। এতিয়া 12 বজাত হিন্দী বাতৰি আৰু 12:05
2: নমস্কার। আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে জাগৃতি শর্মা। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: जेपीएससी, जेएसएससी

0: आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति

0: भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support e-challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Nabin were also present on the occasion. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by BRICS Senior Officers meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS Environment Ministers meeting would be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Rajasthan today. He will also inaugurate the dairy processing plants and cattle feed plants of various milk unions. At the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. The JPSC-JSSC aspirants' agitation in Jharkhand has intensified, with students announcing fresh protest programs over alleged irregularities in recruitment examinations. The students are demanding cancellation of the JPSC 11th to 13th examinations and the JSSC-CGL examinations.

0: Mehdi Hassan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं

0: आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
2: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार

0: 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
3: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव

0: को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें त्रिवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एंड

0: ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: এতিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: मेरा कोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
1: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
0: अरे ये तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देते। भाई उतार चल।
1: हाँ
0: उतार चल।
1: हाँ कृपा
0: भाई, तुम मेरे दोस्त ही नहीं सगे भाई की तरह हो।
1: सो तो
0: बोला तुम ऐसा करो, तुम्हें कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं।
1: देखो भाई कृपण चंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
0: बताओ बताओ जल्दी बताओ,
1: बताओ
0: बताओ
1: बताओ
0: बताओ। अरे वाह,
1: देखो भाई तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां दिलवा दो।
0: जरी के काम की साड़ियां?
1: अरे इतना ही नहीं, साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
0: साड़ियां जेवर? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा नुस्खा है।
1: महंगा?
0: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदार चंद भाई उदार चंद, कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: ओ, ओ, तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
0: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई,
1: हाँ?
0: साड़ी जेवर पर कमाई,
1: हाँ?
0: समझो उसकी आफत आई।
1: हाँ? तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
0: क्या मतलब?
1: अरे भाई जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
0: हाँ तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
0: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है? है बोलो भाई, है तो गारंटी नहीं? अरे भाई तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
1: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
0: एक ही बार तो की थी।
1: हाँ एक ही बार की। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
0: नहीं नहीं आया, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो। उदार चंद,
1: हाँ
0: कोई और नुस्खा सोचो।
1: नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता, बेटी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
0: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
1: अच्छा?
0: अब रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
1: ठीक है मैं दुलारी को भेजवा देता
0: हूँ। दीदी को भेजना जरूर।
1: हाँ भेज दूंगा।
0: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी जेवर।

0: शादी? आय आय आय आय आय आय, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। अरे
1: चाचा जी,
0: हाथ लगी तुम आ गई,
1: क्या बात है मुझे बताइए। चाचा जी मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
0: अरे बाबा, शादी नहीं बर्बादी। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
1: लेकिन चाचा जी,
0: उसने इसलिए बड़ा दिया।
1: चाचा जी, रूपा किसी को चाहती
0: है? किस चीज का नाम है जी?
1: उसे पति चाहिए।
0: मैं कुछ नहीं जानता।
1: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए। उसकी शादी कर दीजिए। रूपा देखा दुलारे, चिंता की कोई बात नहीं रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारे, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद के आगे तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चलें।
0: प्यार हो गया है, शादी करेंगे। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा था तू? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है, मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
1: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
0: क्या हुआ मेरी बेटी को?
1: बदकिस्मत थी।
0: अरे तुम्हारी बोलो तो कुछ।
1: दुर्भाग्य।
0: अरे बताते क्यों नहीं, क्या हुआ?
1: रूपा बहन,
0: क्या हुआ उसे?
1: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई, पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती, मेरे लिए एक ही रास्ता है,
0: क्या,
1: मौत।
0: और वो नीचे कूद गई?
1: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
0: क्यों?
1: चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है, पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
0: गई। मूर्छित हो गई? मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ।
1: जल्दी जाइए,
0: रूपा को देख लेना। मैं अभी
1: डॉक्टर। रूपा लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
2: डॉक्टर?
1: हाँ हाँ,
2: अब क्या होगा, डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी?
1: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा। अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा। चाचा जी, आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
0: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी, क्या बात है?
1: चाचा जी, रूपा पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
0: नहीं ऐसी बात नहीं है।
3: मैं डॉक्टर बोगसचंद।
0: हाँ हाँ, बोगसचंद, बिल्कुल बोगस।
3: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
4: और मैं हूँ कविराज
0: मूढ़ानंद,
4: नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता
5: है। कम नहीं हूँ, हकीम अहमक सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूँ और चाहूँ तो जिंदा को।
0: अरे भाई, मैंने कहा अपने मुंह में मिट्टू बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
3: क्या तकलीफ है आपको?
4: मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है।
5: अरे नहीं, मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे कम
0: सहायता के मेरी बेटी नहीं, उसकी सहेली है।
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
4: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता।
5: हाँ तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई, मरीजा कहाँ है?
0: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
1: जाइए।
0: वो आ गया है। क्या हाल है मेरी बेटी का?
3: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
0: गुड, वेरी गुड।
3: बॉडी में

0: इट्स फॉरेन मैटर है।
1: क्या मत कहो जी, मेरी बेटी एकदम देसी है।
2: देसी वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
3: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगस चंद?
0: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोचनीता।
2: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
1: अच्छा,
2: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सकेगा।
1: अच्छा ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। बेटी को देख लो।
0: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
2: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
3: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
0: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
2: अरे क्यों मिथ्या खत्म करते हो, जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते हैं।
0: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं, छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
2: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
3: अरे भाई,
2: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं।
3: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए शफा, मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
2: अच्छा,
3: अब धोबी चंगा हो गया।
0: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
3: जानवरों के डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
0: गधों का इलाज करता हूँ।
2: दीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
1: बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप लोगों ने क्या किया?
2: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बचकर नहीं जाता।
1: तो जल्दी कोई इलाज बताइए।
2: मतलब आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
0: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सेठ जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
2: और अपनी भी तो कहो सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
3: हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जहीर और ठग हैं।
2: हाँ बिल्कुल ठीक।
3: अरे खानदानी हकीम का जनाब, सिर्फ मैं हूँ खानदानी हकीम। ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक पकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
1: मगर हकीम साहब,
3: हाँ जी
1: मरी, मैं नहीं, मेरी बेटी है।
0: तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया,
2: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
0: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को
3: देखने जाते
1: हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस।
0: और
1: बेटी
0: के लिए दवा
1: से पाला पड़ा।
4: चाचा जी, क्या बताया उन लोगों ने?
1: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
4: मैं तो पहले कह रही थी,
1: लगता है मेरे रूपा को मन कोई दूर कर नहीं पाएगा।
4: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
1: बेटी तू भी चलाएगी।
4: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
1: अरे तो जाना, जब मेरा मुंह क्या पास नहीं है, जाकर जल्दी से उसे बुला ला। और देख बेटी, बेटी फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में।
4: मैं सब पक्का कर लूंगी, अभी गई और अभी आई।
1: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी
5: रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपया पर पानी फिर जाएगा।

0: न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है।
1: अरे भाई डॉक्टर बोगस सर ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
0: हाँ भाई बेहोश पड़ी है।
1: अरे भाई डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो, मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
0: क्या करूं बताओ ना।
2: उसके कान में धीरे से कहो, बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ, बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
0: अपनी बकवास बंद करो ना चंदा, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
2: अरे भाई मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें, मैं तो
0: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं, बोलो करते हो नहीं।
2: हाँ, तो हूँ।
0: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो। मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
2: हाँ, बोलो।
0: मेरा नाम भी कृपण चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
2: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
0: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुम सच्ची तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ जाओ।
2: ठीक है अब मुझे क्या।
0: हाँ जाओ जाओ दोस्त कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है।
3: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
4: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना।
3: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइयां हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
4: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो।
3: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें।
4: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करता हूं।
0: अरे अरे बेटी दुलारी दुलारी रूपा की हालत
3: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
0: अरे ये डॉक्टर है
3: क्यों,
0: एकदम छोकरा।
5: श्रीमान जी
0: ये क्या इलाज करेगा,
5: आप मुझे मामूली डॉक्टर ना समझें।
0: अच्छा
5: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
0: ये क्या बला है जी है?
5: ना मैं सुई लगाता हूँ और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
0: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
5: जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ।
0: अच्छा
5: जी हाँ।
3: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी इनके हाथ में जादू है जादू।
0: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब देख लीजिए।
5: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
3: मगर वो तो बेहोश है।
5: जी हाँ है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है, जाकर मरीजा को ले आओ।
3: अभी लाई अभी लाई।
0: कमाल है, वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
5: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
0: मगर डॉक्टर साहब
5: जी
0: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल देख से चल नहीं पाती।
5: सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
3: लीजिए मरीजा आ गई।
5: ठीक है मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं मेरे सामने ही बातें करूं।
3: मगर चाचा जी ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
0: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
5: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
0: श्रीमान जी विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
3: चाचा जी आइए हम लोग उस कोने में चलें, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
0: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
4: मैं आ गया।
3: मेरी प्राण
0: दुलारी
3: मेरी आंखें तुम्हें
0: डॉक्टर क्या बोल रहा है।
3: अरे चाचा जी रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
0: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
3: क्या हुआ चाचा जी, रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना।
0: डॉक्टर साहब
5: जी
0: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
5: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
0: अच्छा अच्छा।

0: कोई फर्क नहीं नजर आ रहा
1: जी। हाँ, पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा फोन पर ले जा, जान ले जा।
2: अच्छा, अच्छा।
0: देखिए, दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
1: अच्छा
0: जी हाँ
1: जी।
0: अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
1: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
0: जी हाँ
1: जी।
0: मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का भूत।
1: शादी?
0: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
1: बिल्कुल
0: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
1: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: देखिए ना
1: जी, हाँ।
0: मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ।
2: तब फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
1: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
0: जी नहीं
1: जी।
0: इसका भी अचूक इलाज है।
1: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
0: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
1: अरे अच्छा।
0: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
1: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दे?
0: जी नहीं जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। शादी करने की जरूरत नहीं है।
1: फिर क्या करें बताइए।
0: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
1: नाटक?
0: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
1: आपका मतलब है कि?
0: हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
1: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
2: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी? नाटक ही तो करना है।
1: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? हाँ बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
0: हाँ, ये समस्या।
1: हाँ, वही वही ना बात।
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
0: वो कैसे?
2: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
1: हो तो सकता है, लेकिन
2: अरे नहीं। लेकिन लेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए। रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
0: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: आप कृपा करके हमारी विनती मानिए, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे। मैं अभी रूपा को लाती
1: हूँ। बचाइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, जैसे भी हो बचा लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
0: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
1: गुड गुड।
0: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
1: सही सही है, बिल्कुल सही।
0: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
2: रूपा आ गई चाचा जी।
1: बहुत अच्छा बेटी, इतना जवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
2: क्या है? सच है पिताजी?
1: हाँ हाँ, पसंद है।
2: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
1: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
2: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
1: अरे सुन तो, अरे सुन तो दुलारी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है, नाटक।
2: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
1: अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बेटी बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं होना।
2: नहीं, लेकिन
1: बेटी ला तो अपना हाथ। हाँ, और भाई तुम भी अपना हाथ।
0: लेकिन वो
1: नाटक अच्छा जा रहा है, चलवाते क्यों? ला बेटी हाथ दो। हाँ, ए चिन्हो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
2: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह, अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
1: ये तो ठीक है।
3: जजमान, मैं कराऊंगा ब्याह।
1: लेकिन पंडित जी, पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है, जो है सो जजमान है। कहाँ है ये संसार, जो है ये रंगशाला है, जिसमें हम आप सब अभिनेता है।
0: तो जजमान, वरवधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
1: जी हाँ, बिल्कुल।
3: तब ठीक है, तब ठीक है। तो बच्चा लोग, अब तुम जरा इसके आसपास फेरे लगा लो, जो है तो।
0: मंगलम भगवान विष्णु।

0: மங்களம் கருடத்வஜம் மங்களம் புண்டரீகாட்சம் மங்களாய தனோஹரி. समझ लो यजमान हमारे भी पढ़ गई है. सदाशिव भाग्यवती रहो, सदाशिव भाग्यवती रहो. हाँ यजमान अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे.
1: जरा मेरी बात तो.
2: चाचा जी आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना. नाटक पक्का होना चाहिए.
1: पक्का होना चाहिए बिल्कुल. मैं आशीर्वाद देता हूँ. बोली ये जोड़ी
3: चल भाई वाह, यानी कि चट मंगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने. अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी. मैं अभी जाकर साड़ियां और जेवर.
1: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया.
0: अच्छा अच्छा जी भैया बोले तो अब हमारी रक्षणा तो मेरे जाए जो
1: कैसी रक्षणा. शादी तो
2: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी. पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है.
1: और यहाँ तो खिदारी
0: जजमान की ये क्या केवल भीषाने पैसे जोड़ दो. अरे राम राम जब जजमान एकदम पक्की शादी कराई है. कम से कम सवा पांच रुपए तो दीजिए.
1: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा ये समझ लीजिए. और लेना हो तो लो नहीं तो उसे भी लौटा.
0: अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान. मैं जाता हूँ.
1: श्री कृष्ण
4: अब हमें भी आज्ञा दीजिए. चलो रुपा
2: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं.
1: ये क्या मजाक है. भाई देखा तुमने, देखा कल की छोकरी हमें बना रही है.
3: अरे इसमें बनाने की क्या बात है. अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दिया है किरमन चंद तो उसे विदा भी कर दो.
1: कैसी शादी कैसी विदा. अरे उदासन तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं सोचते. अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था. देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई.
3: इलाज नाटक भाई ये सब क्या चक्कर है. यानी कि
4: अब हमें क्या मालूम. हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं. आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की. इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया. चलो रूपा.
1: अरे अरे अरे लोगो अरे लोगो अरे अरे लोगो अरे अरे लोगो अरे लोगो अरे उदास जान.
3: हाँ भैया कृपण चंद
1: गए.
2: जाने भी
3: तो जाने तो क्या हुआ.
1: उदासन के बकवास ये बिल्कुल बकवास है. उदासन ये डॉक्टर था डॉक्टर. मेरी लड़की को ले भागा, मेरी लड़की को ले भागा. उदासन मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा. दुलारी से पूछ
3: लो. दुलारी क्या बात है.
2: कुछ नहीं पिताजी, रूपा प्रेम बाबू को चाहती है.
3: ठीक है
2: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं.
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं.
2: इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
1: नाटक.
3: भाई कृपण चंद आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए.
1: भगवान अरे ये क्या हो गया. मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है. मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा. अरे अरे भाई उधार चल.
3: हाँ कृपण चल.
1: अरे तुम आलो
3: हो गया.
1: अरे चक्कर
3: चक्कर
1: चक्कर.
3: अरे नहीं
1: अल्ले चक्कर.
5: पुराना मर्ज नया इलाज, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे. मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी. ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी. इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है.

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी।
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: मैं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं, तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी
2: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है
1: जी। आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
2: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे, पर जैसे चौथी क्लास के बाद में पांचवी क्लास में थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के एक जिला परिषद के स्कूल में आया, उस गांव का नाम था नेकनूर
1: जी, सुंदर नाम है।
2: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात है।
2: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़ कर सुनते थे।
1: वाह।
2: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की, और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए, और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह।
2: तो मूल गांव में जहां

0: रहता हूँ या मेरी फैमिली रहती है वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे?
0: पिता मेरे यहाँ किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है, अभी भी मुझे लगता है कि एक 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है।
1: जी जी
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
1: जी जी
0: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है।
1: जी जी
0: तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था,
1: जी
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था और वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी, और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी जी
0: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पतरे की शेड था।
1: हाँ,
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं भैंसे हैं बकरियां हैं वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो वो सारा गोबर ये सब
1: साफ कर रहे हैं।
0: साफ करके उसके बाद बरसात पतरे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग
1: जी,
0: जिसको
1: तो यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में
0: आती। मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है।
1: जी,
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था
1: जी,
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला, ये संस्कार।

0: लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब ये मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं।
1: जी
0: मेरी माता जी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहां कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है। गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे।
0: ओ
1: ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

0: वामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़ जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध

0: है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है,
1: जी
0: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूड के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां कोई
1: हाँ
0: स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये।
1: जी
0: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल
1: अब
0: भी है, लय भी,
1: अभी
0: सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्प्रेरी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: वाह
0: मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है मान
1: ओके
0: लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू,
1: डाल
0: सर के
1: लिया
0: ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
1: वाह
0: बड़ी बड़ी
1: वाह
0: मूंछ है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
1: यस
0: और जो दूल्हा है वो गांव का है, तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहा है और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
1: क्या बात है
0: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां एक 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे
1: वाह
0: वहां, एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ
1: हाँ
0: मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा, या मैं
1: जैसे
0: आज जीतूंगा कि आप
1: जैसे
0: हारोगे,
1: कव्वालियों के
0: जैसे
1: मुकाबले
0: कव्वालियों के मुकाबले में भी
1: ओहो
0: होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था
1: हो पूरी रात
0: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव की जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा है कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
1: बचपन में याद हो गए थे भारूड
0: बहुत सारी भारूड मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस,
1: अरे
0: तब
1: वाह
0: मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए, जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो बारूद वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जोगी जी।
1: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
2: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था। जो मेरे साथी थे, जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
1: जी,
2: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था, एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में, एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना, तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है, तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया, अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहाँ पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं बीड़ जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब यह है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है, छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड़ में मैंने आठवीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड़ में ही पढ़ता रहा
1: जी। एक नई दुनिया खुली,
2: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी, तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
1: ओहो,
2: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड़ शहर में, बलबीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव-गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है। उसके

0: बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है, पांचों जिलों का जो पांच जिले थे मराठवाड़ा में, तो कमिश्नर ऑफिस था वो
1: जी,
0: तो वो और भी बढ़ गया, वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है, 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंग है, इतने सारे डिपार्टमेंट और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
1: जी,
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहाँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहां सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था, जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड़ में आने के बाद, बीड़ एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: बहुत शुरुआती तौर पर याद है, इतनी सारी फिल्में याद है, जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे।

0: शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
1: दारा सिंह
0: दारा सिंह के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में 5-6 सिनेमा तो देख ही लेते थे पैसे,
1: कितना
0: वो
1: रोमांचक था ये।
0: बहुत रोमांच। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
1: वाह वाह
0: वो
1: वाह।
0: झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में,
1: हाँ,
0: अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे
1: चढ़
0: पे
1: रहा
0: चढ़
1: है।
0: रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था,
1: जी
0: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया,
1: जी
0: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
1: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी।
0: तभी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी,
1: लड़की बने
0: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर
1: जी
0: उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया, तो
1: ओ
0: पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया।
1: जी
0: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला,
1: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे।
0: हाँ जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का, पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड़ ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहां जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए वहां की राजनीति में। ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है, वहां नहीं है ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं, जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है,
1: जी
0: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है, पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है, जब कॉलेज में आया 2-3 साल गैदरिंग में काम किया और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया, तो मैं तो इतना छोटा सा था और 2.5 अखर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में, तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया, और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे,
1: जी।
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां 1 साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे, कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली,
1: जी
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही क्या कहती थी।

0: एक ही बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना, पर वो स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहां तक कि यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे
0: जी,
1: थे।
0: जी, जी,
1: आपने
0: जी।
1: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी,
0: मुगले आजम देखी।
1: वाह, मुगले आजम का गाना सुनते
0: मुगले
1: हैं,
0: आजम का गाना सुनते हैं।
1: जब प्यार किया तो डरना
0: डरना
1: क्या,
0: क्या, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने

0: कि वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
1: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड़ में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
0: नहीं, बीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक करते।
1: जी जी जी गैदरिंग का मामला।
0: उसके
1: था।
0: बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए।
1: जी
0: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था, तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की 15 दिन की 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस, मुझे याद आ रहा है नाटक हमने किया बादल सरकार का,
1: जी
0: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
1: वाह,
0: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा।
1: जी
0: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक मैं बीड़ में ही समझ गया।
1: वाह वाह।
0: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया, तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे, तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहां दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
1: ओ।
0: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है, और जो मिलिन कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है, और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया, और मुझे देखते ही अविनाश डोळस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्र्यंबक महाजन,
1: जी
0: वो पढ़ाने आते थे, तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया, और मैं वो रोल निभाया, और उसके 10-15 शो हमने किए।
1: वाह,
0: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर की हैसियत से या एक एक्टर की हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य तय,
1: ओहो,
0: रुकिए राम राज आ रहा है।
1: हाँ,
0: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है। उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया, और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो
1: जी।
0: नाटक। वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक, जो फेस्टिवल होता था नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो
1: वाह,
0: पीटर ब्रुक ने देखा।
1: गजब गजब।
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके, एनएसडी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा, अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहां मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म। तो ये परफॉर्मेंस करते रहे, पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा।
1: जी
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को, या कहीं भी, या गरीब किसान है।

0: गरीब मजदूर है। तो ये मूवमेंट में जो जो मैं कह रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहां किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे थे और एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की,
1: जी
0: वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक
0: जी
1: तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के वो
0: जी
1: सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्य शास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करें, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये
0: अरे
1: कसम खाई
0: बाप
1: थी,
0: रे,
1: मैं जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए
1: तो
0: होंगे।
1: मैंने तो, मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए।
0: बाप रे,
1: मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह,
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का,

0: चाहे वो मराठी की किताबें मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
1: जी
0: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला
1: तो एक
0: उस
1: सॉलिड
0: यूनिवर्सिटी
1: बैकग्राउंड लेके
0: एक
1: गए।
0: सॉलिड बैकग्राउंड। और प्रैक्टिकली भी आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अंबेसा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली स्टेज
1: पैसे फेंकते
0: पे
1: थे,
0: इतने पैसे फेंकते थे।
1: वाह।
0: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के, हाँ,
1: पेट में लगा,
0: पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई।
1: अरे बाप
0: उसके
1: रे।
0: बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर बाई, केशर काकू, हम उनको
1: जी
0: काकू बोलते थे। तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था, अब वो
1: हाँ
0: 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए,
1: जी,
0: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
1: मॉडल भी लेके गए।
0: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है
1: अनुभव
0: और
1: है।
0: सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया। तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे हैं।
1: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
0: ए आर रहमान का लगाइए
1: ठीक है, दिल से गाना सुनते हैं,
0: या
1: दिल से।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

दीवानापन जब हदों से गुजर जाए तो इश्क इबादत बन जाता है। फिर हर धड़कन में बस एक ही नाम गूंजता है, हर रास्ता उसी की ओर मुड़ जाता है। कहते हैं सच्चे दीवाने मंजिल नहीं देखते, वो तो सफर से ही मोहब्बत कर बैठते हैं। उन्हें खुशी इस बात की नहीं होती कि कोई उनका हो गया, बल्कि इस बात की होती है कि उनका दिल किसी के नाम पर धड़कना सीखे।

0: वो कभी मुस्कुराकर हाल पूछती है तो कभी मेरी खामोशी को भी पढ़ लेती है। समझ नहीं आता ये बस अपनापन है या वो मेरे दिल की आहटें सुन लेती है। उसकी नजरों में कुछ तो राज छिपा है जो हर मुलाकात में थोड़ा और खुल जाता है। दिल कहता है ये मोहब्बत है, पर उसकी खामोशी हमेशा उलझा देती है और दिल में एक ही सवाल बार बार उभर आता है।
1: यूं ही तुम

मैं सोचता हूं क्या तोहफा दूं उसे जो उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर ठहर जाए। फूल दूं तो मुरझा जाएंगे, चांद दूं तो हर रात बदल जाएगा। फिर सोचा अपनी धड़कनों की स्याही से कुछ अल्फाज लिख दूं उसके नाम पर, या फिर वफा की खुशबू अपनी हर खुशी उसके नाम कर दूं। मेरे पास सबसे कीमती मेरा दिल था, तो आज उसी को करता हूं नाम तुम्हारे।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। जब आना मेरे पास तो अपनी आंखों में थोड़ा सा इश्क और ढेर सारा नूर लाना, होठों पर वही शरारती मुस्कान जिसे देखकर मेरी धड़कनें मुस्कुरा उठें, और हाँ एक वादा भी साथ लेते आना कि हर खुशी में मेरा हाथ थामोगे और हर मुश्किल में मेरा साथ निभाओगे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर मुलाकात अपने आप में सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है।
1: पापा।

0: এয়া আকাশবাণী তেজপুৰ। খন্তেক পিছতে আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰচাৰিত হিন্দী আৰু 6:05 ইংৰাজী বাতৰি আমাৰ কেন্দ্ৰই ৰিলে কৰি শুনাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে সৰফিৰোজী। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और

0: लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government has introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Earlier in the day, Mr. Shah unveiled a statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at Chittorgarh district of Rajasthan on the death anniversary of the veteran leader. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building, guiding

0: हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को

0: नौकरी और माताओं के लिए बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
0: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
1: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
3: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत

0: श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जाँच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
3: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है।

0: लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state.
3: If we want to make India a fully developed nation by 2047, we need to empower the youth, the poor, farmers and women. With this objective, farmers are being provided with the Kisan Samman Nidhi scheme benefits. Dairy facilities worth 500 crore rupees are being established for livestock. Employment opportunities are being created for the youth, and the BJP government has taken steps to expand Saras Dairy for women.
2: He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for